पौड़ी से भी है सुख पाई है सो साहबजादा संभालिया है। जित किता पाए अपना सा काल बुरे क्यों का लिया है। मंदा मुरन की चई देल मिंद्र निहालिया है। जो साहब लाल हरिय ते वह पासा टालिया है। किसला है।

ठाकुर जी दे नाल तो प्यार कर लिया होंदा ना तेनू ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती। किधरे परमेश्वर जी दे नाल प्यार इन्ना कर लिया होंदा ना तेनू परमेश्वर जी की प्राप्ति हो जाती। इस प्रकार जिस वेले वेसवा ने आख्या ना ते वेसवा दे अपने भी मन दे अंदर बहुत वैराग आया। जे कोई शरीर किसी शरीर दे नाल इन्ना मोह कर सकता है ते इन्ना जेकर परमेश्वर जी दे नाल प्यार कीता जावे, जो मैं इसनू कह रही है तू प्यार परमेश्वर जी दे नाल करदा तेनू प्राप्ति हो जानी सी, मैं भी जेकर विषयां दी बजाय इन्ना प्यार परमेश्वर जी नू कर दी मैनू भी प्राप्ति हो जानी सी। इवें साध संगत जी तिसदा मूह वेख करके वेसवा के मन में भी वैराग आ गया। कहण लगी अज तो पापा की किरत त्यागी, मैं भी परमेश्वर जी की बंदगी करांगी। इस प्रकार वेसवा भी चुबारा छड़ के जंगल में चले गई, जाके बंदगी करन लगी। उहदा मन ते जुड़ गया क्योंकि मन के अंदर वैराग आ गया। पर वेसवा के उपदेश ने की मन के उपर असर करना सी, उसकी गल मन के वेसवा बंदगी कर दी है, मैं भी बैठ जाना जंगल में, अखां मीट करके बैठे रहिंदे ने पर मन कोई नहीं बंदगी विच जुड़दा, मन हाले भी मुड़ मुड़ के वेसवा दे रूप वाली जांदा है। साध संगत जी अखां मीट करके सारा दिन बैठे रहिंदियां नूं एक दिन शाहूकार ने तकिया, जाणिया कोई महात्मा बैठे ने, भोजन प्रशादा छकावां लिया करके भोजन का थाल अगे रख दिता। जिस वेले नेत्र खोले सामने प्रशादा देखिया भोजन छक लिया। शाहूकार रोज भोजन लिया करे, ये रोज छक लिया करन। एक दिन शाहूकार ने किधरे किसे कार्ज वास्ते जाना सी, कहन लगा अज महात्मा दे कोल भोजन नहीं पहुंचाया जाना, अज मैं अपने कार्ज वास्ते चले है। ते तिसदी घरवाली शाहूकारनी कहन लगी पति जी साधु संतां दी सेवा क्यों छड़नी है, अज भोजन प्रशादा मैं छका के आउनी है, नाले जिन्हां दे रोज तुसी दर्शन करदे हो अज मैनू दर्शनां दा लाभ प्राप्त होवेगा। इवें कह करके शाहूकारनी भोजन प्रशादा परोस करके थाल दे विच इन्हां वास्ते बिल मंगल जी वास्ते लै करके गई है। शाहूकार जी किधरे गए ने, शाहूकारनी नूं आउंदिया कुछ कवेला हो गया, अज नेत्र खुले ही ने, अज ध्यान भोजन वल है, भोजन हुण तक आया नहीं, भोजन की उड़ीक करते ने। जदों थाल भोजन का आया भोजन ते छकिया, पर साध संगत जी हुण शाहूकारनी का रूप देख करके मन मलीन हो गया। शाहूकारनी तां महात्मा समझ के भोजन छका के अपने घर आ गई, ते बिल मंगल नाम का ब्राह्मण भी शाहूकारनी दे पिछे पिछे घर आ गया। शाहूकारनी ने शाहूकार नूं दस्या पति जी वह महात्मा ते घर विच पिछे ही आ गए, ते वह जिहड़ा शाहूकार बड़ा प्रसन्न होया, कहण लगा भागा वालिए साडे तां भाग खुल गए, महात्मा जी ने घरे आके दर्शन कीते ने, रज रज के सेवा करिए। जदों यह बचन शाहूकार दे सुने, किन्ने दिन उन्हां तो सेवा कराउंदे रहे, मन दे विच फिर अपने पाप कर्म तो गिलानी आई, ओ मेरिया पापी मना, वह तेनू महात्मा समझते ने, तेनू साधु समझते ने, तेनू तपस्वी समझते ने, तेनू बंदगी करन वाला समझते ने, तेरे मन का फुरना किहड़े पाप कर्मां नू जांदा है। ते इस वेले शाहूकार नू कहन लगा जेकर सचमुच ही मेरी सेवा करनी चाहते हो ना तो मैनू तोड़ लोहे दे गर्म करके लोहे च पा के तपाक के लाल करके लिया के दो। तोड़ क्या जाता, इवें कह लीए लोहे दियाँ सुलाखा कह लीए, लोहे दियाँ सीखा कह लीए, लोहे दे मोटे किल कह लीए, इस प्रकार ये समझण दे शब्द ने। कहन लगा लोहे दे तोड़ मैनू तपा के लाल करके लिया के दियो। शाहूकार ने पुछया महात्मा जी की करोगे उन्हां तोड़ा दा, कहन लगा अखां दे विच फेर करके अन्ना हो जावांगा। महात्मा जी क्यों अन्ना होना चाहुंदे हो, फिर अपनी विथ्या दसी। इन्हां नेत्रां दे नाल पहला वेसवा नूं तकिया ते मन मैला हो गया, शाहूकार जी तुहाडी घरवाली ने ते महात्मा जाण के सेवा कीती पर मेरा मन इस नूं भी वेख के मैला हो गया, ये दोष सारा अखां दा है, ये अखां मैं हुण रखणियां नहीं। महात्मा जी ने भावे बड़ा वाहिगुरु ब्राह्मण ने उस शाहूकार ने समझाउण दा बड़ा जतन कीता पर कहण लगे नहीं, दोष अखां दा है, सजा जरूर देनी है। जेकर सचमुच ही सेवा कमाउणी चाहुंदे हो ते बचन दा मोड़ो तोड़ लै के आओ। शाहूकार हुक्म दा बज्जा, अग दे विच तपा के लाल करके तोड़ लै के आया। इस वेले बिल मंगल नाम दे ब्राह्मण ने अपनियां अखां दे विच दोवें तोड़ फेर लए, इस प्रकार अखां जंदगा रहियां ते अन्ने हो गए। अन्ने होने करके इन्हां दा नाम सूरदास पिया। साध संगत जी इस प्रकार फिर सूरदास करके प्रसिद्ध होए। जिन्ना चिर अखां दे जख्म रहे उन्ना चिर उस शाहूकार दे घर रहा। जदों जख्म राजी हो गए ना, कहण लगा हुण मैनू फड़ के जंगल विच छड़ के आओ, हुण तुहाडी सेवा नहीं लैनी, हुण परमेश्वर जी की सेवा बंदगी की करनी है। भावें वह सेवा करदे चाहवान होए पर तां वी साध संगत जी कहिंदा नहीं, हुण ते जंगल विच छड़ के आओ, हुण ते बंदगी करनी है।
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰੀਝ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਸਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅੰਧਤਾ ਹੀ ਆਪ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇਤਰ ਆਪ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਜਿੰਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਧਤਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਭੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਦਰਗ ਹੈ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਾਫਰ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਗ ਤੇ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਹੈ, ਬੀਦੇ ਨਾਕ ਨਾ ਕਾਨਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਰਿਜਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿੰਨਣੇ। ਹੁਣ ਨੱਕ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗ ਤੇ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਭੰਨਣ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਈ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਬਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੰਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਈਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਧਤਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਨੇਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਓ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

तौ प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर घर जोग जति के सुर सुरार्दम शुद्ध सुधा देख शांत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखेत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन की गौन को जात निवारे भारी बुजान के भू बलि बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय कुगा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूप भवित भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ नांद या दमदान सुसंजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जद्दार सब सुविचार हजार देख

श्री भगवान भजी बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हल्लेंगे तोर अरिल मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अबिचारे सार की धार उछैया तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात दुन पापन के बुंज खपेंगे साध समूह प्रसंग फिर जग सत्र सभा अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधिप जौंत्र लोक को राज करेंगे कोटि स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जब फांस परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फिर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद का बैठ रहे उपग ध्यान लगायो नहात फिर लिए सा समुद्रन लोग गयो।

नहीं प्रपायो। काहुला पाहन पूत धर्यो सेर, काहुला लिंगरे लटकायो। काहू लखियो हर अवाची दिशा महे, काहू पछाह को शीस निवायो। को भूतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रियावर्जी

विचार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूपृत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक विदार कल काल करम विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापयो जह थाप अनखेद भेद अशेद मुखचार गावत वेद यह नेत निगम कहंत मुखचार बकत बेअंत अनभिज्य अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जे कीन जगत पसार रच

जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निरपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंध नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनेन्द्र कई देव आद कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुकचार कई रुद्र शुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोका भणंत कई वेद भेद कहन कई शास्त्र सिमृत बखान कहु कथत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्ध ताव दुरंत कई उर्ध बाहु संन्यास कहु जोग भेद उदास कहु निवली कर्म करंत कहु पौन आहार दुरंत कहु तीरथ दान अपार कहु जग कर्म उदार कहु अगन होत्र अनूप कहु न्याय राजभूत कहु शास्त्र सिमृत रीत कहु वेद सुविपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहु करत जल जाप कहु सहत तन परताप कहु बास बनह ग्रंत कहु ताप तनह सहंत कहु गृहस्थ धर्म अपार कहु राज रीत उदार कहु रोग रहत अपहरम कहु कर्म करत अकर्म कहु शेख ब्रह्म स्वरूप कहु नीत राज अनूप कहु रोग शोक विहीन कहु एक भगत अधीन कहु रंक राजकुमार कहु वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख नाम उचरंत बैराग कहु सन्यास को फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नह फल मान बिन एक नाम आधार।

हरी गुफे हरी शिते हरी नभे हरी इहा हरी उहा हरी जिमी हरी जमा हरी अलेख हरी अभेख हरी अदोख हरी अद्वैख हरी अकाल हरी अपाल हरी अशेद हरी अभेद हरी अजंत्र हरी अमंत्र हरी सुतेज हरी अतंत्र हरी अजात हरी अपात हरी अमित्र हरी अमात हरी अरोग हरी अशोक हरी अभर्म हरी अकर्म हरी अजा हरी अभय हरी अभेद हरी अशेद हरी अखंड हरी अभंड हरी अडंड हरी प्रचंड हरी अतेव हरी अभेव हरी अजेव हरी अछेव हरी पदु हरी थपु हरी तपो हरी जपो हरी जलस्तु ही थलस्तु ही नदस्तु ही नदस्तु ही वृचस्तु ही पतस्तु ही छितस्तु ही उधस्तु ही पजस्तु अंग पजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमी तुही जमा तुही मकी तुही मका तुही अभू तुही अभय तुही अछू तुही अछ तुही

एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे क्या तरत है। भूत बन चारि चित छौना सब दूधाधारी, पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजैया, ते तो गौवन के जैया ब्रग भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंछी की बडैया दे, बगला बिड़ा ब्रग ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी बै बखानी नाहे, ऐसी ना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बस जाता है भूचरी के जैया कह, नभ के उडैया सो चिरैया के बखानिया। फल के बछैयाता है बांदरी के जैया कह, आज से फिरैया ते तो भूत के पछानिया। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग, आग के बछैया सो चकोर सम मानिया। सूरज सिवैयाता है कौल की बडाई दे, चंद्रवा चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिया। नारायण कछ मछ तेंदुआ।

शिव से तपस्या ब्रह्म से ब्रह्मा से ना वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिरा।

योगी यति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लोचन रत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है मान से महीप और दिलीप कै

एक भावना बीन कथ पावा जगदीश को शीश पटकट जग कान में खजुरा धस है मुंड छट कट मित्र पुत्र हूँ के सुख सो आ कुछ रैया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमया और दूसरो ना भूख सो का भयो भेड़ जो घसत

कहु लोभ की खुमारी तो अनेक गुण गावई। कहु ब्रह्मचारी कहु हाथ पर लगावे बारी। कहु ढंडदारी होय क्या लोगन भ्रमावई। कामना अधीन परियो नाचत है नाचन सु। ज्ञान के विहीन गत ब्रह्म लोग पावई। पांच बार गीदर पुकार परे शीतकाल। कुंचर वगद अनेकदा पुकार ही। का भयो जो पे कल वत्र लियो काशी बीच। चीर चीर चोर ठाक उठारन सोमारी। का भयो फांसी डार बुड़ियो जड़ गंग धार। डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार। भावना विहीन कथ ब्रह्म को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइया तापनाथ। तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कीत जो पपायत अजाप देव। पूदना सदीव तू ही उचरत है। नव के उडित जो नारायण पाइयत। अनल आकाश पंच डोल बुकरत है। आग में जर जगत राण की परत कर। पताल के बासी क्यों भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी पहु। को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो। हिंदू तो रखो राफ जी माम साफी। मानस की जा सब।

एक ही स्वरूप सबै के ज्योत जानबो देह रामसी सोई पूजा निवाज ओई मानस सबै एक पयाने को भ्रमाव है देवता देव जछ गंधर्व तुरक हिंदू नैरे नैरे देशन के भेष।

जैसे जैसे एक आग देखन का कोट आग उठे नारे नारे हो का फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनुग धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। किते कच्छ मच्छ किते उनको करत पच्छ किते अच्छ वच्छ हुए सब पच्छ उठ जाएंगे। कितना वो बीच अच्छ पच्छ को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष हुए पछाए खाए।

ताहिते उपज सब ताही मैं समाहेंगे कुकत फिरत किते रोवत मरत किते जल मैं डुबत किते आग मैं जरत है किते गंग वासी किते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के ब्रह्माई फिरत है करवत सहत कित भूम गडत किते सुअब चढ़त कित दुख भरत है ज्ञान में उड़त कित जल में रहत किते ज्ञान के विहीन जग जारे मरत है सोधहार देवता विरोधहार दानो बड़े बोधहार बोधक प्रबोधहार जापसी घस हरे चंदन लगाए हरे चुआचार पूज हरे पहन चढ़ाए हरे लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व बजाय हरे किन्नर सब पच हरे पंडत दपंत हरे तापसी तौप प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद नारागंग नारंगंग न रूपंग न रेखंग न मोहंग न क्रोहंग न द्रोहंग न द्वैखंग न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सत्रंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न धामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सत्रंग न भामंग अलेखंग अभेगंग अजूनी स्वरूपंग सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिर कौन भेखंग कहा नाम ताको कहा कह कहा वह कहा कह बखानु कह मैं नाव न रोगंग न सोगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी या छेदंग अशय आद अद्वै विनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद अभंगे नमो आद अभंगे किति कृष्ण से कीट कूट उपाय उसारे गड़े फिर मेटे बनाए अगाधे अबैध अद्वै अविनाशी परेंग परा परम पूरण प्रकाशी न आदंग न बैदंग अगादंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उडंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविके भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग भेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेयंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अशयाद अद्वैजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न वैदंग न रोगंग न सुगंग अभय निर्विघातंग अशेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग अप्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पायंग न रूपंग न पूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न पेदंग न परमंग सदैवं सदा सर्व सिद्ध वृद्धं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निर्युक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं अच्छयाद अव्युक्ते अथापे विभुक्तं अच्छयाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सुखं न साकं परेयंग पवित्रं पुनीतं अताकं न जातंग न पातंग न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भर्मंग न सर्मंग न साकी न भर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न बाकी न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहु कंज के मंज के परम भूले कहु रंग के राज के धर्म अलूले कहु देत के भेद के धर्म धामे कहु राज के साज के बाजता में कहु अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहु सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहु अंग के रंग के संग देखे कहु जंग के रंग पेखे कहु धर्म के कर्म के हरम जाने कहु धर्म के कर्म के भ्रम माने कौ चार चेष्टा कौ चित्र रूपं कौ परम प्रज्ञा कौ सर्व भूपं कौ नेह गृह कौ देह दुखं कौ औषधि रोग के सुख सुखं कौ देह विद्या कौ दैत बानी कौ जच गंधर्व किन्नर कहानी कौ राजसी साक्षी तामसी हो कहु जोग विद्या धरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु जोग जुगतंग कहु भूम की भुगत मैं भरम भुगतंग कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु जच विद्या धरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पुण्या कहु वेद विद्या कहु व्योम बानी कहु कोक की काप कथा कहानी कहु अद्र सारंग कहु भद्र रूपं कहु मद्र पानी कहु शुद्र स्वरूपं कहु वेद विद्या कहु काव्य रूपं कहु चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहु परम पुराण कहु पार पावे कहु वेद पुराण के गीत गावा कहु शुद्ध सिकं कहु ब्रह्म धर्मं कहु वृद्ध अवस्था कहु बाल कर्मं कहु ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु जोग भोगं कहु रोग रागं कहु रोग हरता कहु भोग त्यागं कहु राज साजं कहु राज रीतं कहु पूरण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहु आरवी तोर के पारसी हो कहु पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहु देद भाग्या कहु देव बानी कहु राज विद्या कहु राजधानी कहु मंत्र विद्या कहु तंत्र सारं कहु जंत्र रीतं कहु शस्त्र
रंग। कहु होम पूजा कहु देव अर्चा कहु पिंगला चारणी गीत चर्चा। कहु बीन विद्या कहु गान गीतं कहु मरिच भाग्या कहु वेद रीतं। कहु नृत्य विद्या कहु नागवाणी कहु गारुड़ गुड़ कथा कहानी। कहु अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहु वीद विद्या भूतं प्रभा हो। कहु शैल शाला धरे शत्रधारी कहु राजसा जंग राजाधिकारी। नमो नाथ पूरे सदा सिद्धदाता अशेदी अशादा विधाता। नात्रस्तं नाग्रस्तं समस्तं सरूपे नमस्तं नमस्तं।

अंकुट भंडार दाता दुरं सर्वं प्रकार अनभूत तेज अंशिज गात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धराम जय सत्र मित्र नहीं जात जन्म जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतमान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं जैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय धर्म जात नहीं भरम भीख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं बरग व्याध जय रोग सोग नहीं सत नहीं रूप रास जय रोग सोग नहीं जोग जुग जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काज बाज कटियो न अंग अक्षस रूप अख्या भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय तूल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलप जोग साधत दुरंत तन सीध घाम बरखा सहंत कई कलप एक आसन पितांत कई जतन योग विद्या विचार साधंत तव पावत ना पार कई उर्द बा देशन ब्रह्मांत कई उर्द मध पावक झुलांत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई को काव कथत कतेव कई अगन रोध कई पवन आहार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साक पत्र भाष नहीं तदप देव होवत प्रताक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत को वेद रीत जग्याज करम को अगन होत्र को तीरा धर्म कई देश देश भाखा रटन कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भान भान तन विचार नहीं नैगता स्पायत ना पार कई तरत कई तीरत तीरत भरम सो भरम कई अगन हो कई तेव भर करम कई करत वीर विद्या विचार ने तदपता स्पायत ना पार कौ राज रीत कौ जोग धर्म कौ सिमृत शास्त्र उचरत सो करम निवलियाद करम कौ हस्तदान कौ अश्वमेध मको बखान कौ करत ब्रह्म विद्या विचार कौ जोग रीत कहु वृद चार कहु करत जक्ष गंधर्व गान कहु धूप देव कहु अर्घ दान कहु पितृ कर्म कहु वेद रीत कहु नृत्य नाच कहु गान गीत कहु करत शास्त्र से मृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह दे कई जे गेह वास कई भ्रम देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकांत जाप कई जपत जो कल्पन प्रजंत नहीं तदपता स्पायत नांत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप देष्ट देखे मुरार मिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत होम अर्जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीना फोकटो धर्म फोकटो सरब धर्मा विहीन तो प्रसाद तोटक छंद जय जंपो जुगण जूह जुअंग भय कंपो मेर पयाल भुअंग तपताप सरब जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभियंग अनखंड अभूत अछेद अशियंग अनकाल अपाल दयाल असुअंग जय ठट्यंग मेर आकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रच्यंग देव अदेव बरंग सबकी निदीन जमीन जमा जय रच्यंग सरब मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुकंग जय ताप न साप न सुख सुखंग जय रोग न सोग न भोग पुअंग जय खेद न भेद न छेद शयंग जय चात न पात न मात पितंग जय रच्यंग क्षत्रि क्षत्र स्थितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैक न राग न दुख गणंग जय अंड ते ब्रह्मांड रच्यो दस्चार करी नव खंड सचियो रजतामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचांड लियो श्री सिंधुर बिंद नगिन नगंग श्री जाच्छ गंधर्व फणिंद कुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल दृगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सीतज उत्त भुजंग कई देव अदेव सराज पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जो जुतंग जय तात न मात न प्रहत सुतंग जय रोग न सोग न भोग पुअंग जय जंप है किन्नर जच जुवंग नरनार न पुसंग जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गजबाज रथा दिख पांत गणंग भूत भविक भगवान तुवंग जय अंड सीत जे रजंग अज भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बलि बन बास कियो फल फूल कली वो मेर आकाश निवासी तंग रच रोज आकाश चंद्र बृतंग दूत चांद दीस

जय अखंड अखंड प्रचंड किए, जय छत्र उपाय छपाए दिए, जय लोक चतुर्दस चार रचे, नर गंधर्व देव अदेव सचे, अनधूत अभूत अछूत मतंग, अनगाद अव्याद अनाद गतंग, अनखेद अभेद अशेद नरंग, जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग, जय राग नरंग नरेख रुखंग, जय सुगुण पुगुण जुग जुगंग, भुव गंजन भुव

अन भांज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पारणव पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप अदंड प्रभा जय जमपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत ना भेद रह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अदो मुख ताप तप कई कल्पन लो तप ताप कर नहीं न कृपा निध पान पर जय फूकर धर्म सब तज है एक चित्त कृपा नित को जप है तेव या भव सागर को तर है भव भूल ना देह पुनर्धर है एक नाम बिना नेक को

अगंज आद देव है अभंज भंज जानी है अभूत भूत है सदा गंज गंज मानी है अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा अगंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अंशिज तेज मानी है सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग अलाग अधग है अभूत अभर्म अभेक है न तात मात जात है न पाच हन बरण है अदेक है अधेक असेक अभेक है सदैव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेष विश्व भरण है जिमी जमान के विख्या सदैव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानी है सदैव सर्व ठौर में विशेख आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुराण नीत नीत कै बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आदेव है कहो सो कैस पाइए जिमी जमान के विखै समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकी और मकान अप्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न

na manha na matha na sagha na sankha na jachha na gandharva na narha na narha na churha na shahuha na shahku kumarha na neha na geha na deha ko banao hai na chal hai na chidra hai na chal ko milao hai na yantra hai na mantra hai na tantra ko sarup hai na raag hai na rang hai na rekh hai na roop hai na yantra hai na mantra hai na tantra ko banao hai na chal hai na chidra hai na chaya ko milao hai na raag hai na rang hai na roop hai na rekh hai na karam hai na taram hai ajanm hai abhik hai na tat hai na mat hai khyal akhand roop hai chhed hai bhed hai na rang hai na roop भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है ना रोग है ना सोग है ना भेद है ना पंड है ना अंग है ना रंग है ना संग है ना साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमाथ है ना सीत है ना सूच है ना ग्राम है ना घाम है ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है ना देव है ना दैत है ना नर को स्वरूप है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र की विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना द्वैख है ना भेक है ना दुई है ना द्रुव है ना काल है ना बाल है सदैव दयाल रूप है अगंज है अभंज है भर्म है भूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत भेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चयन वरण है व्यंत है अनंत तेज जानिया अभूम अभिज है सदा अचेज तेज मानिया न आद है न व्याध है अगाध रूप लेखी है अदोख है अदाग है अच्छा प्रताप पेखी है न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न शल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज तिभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ मोहकार है ना आद है ना गाद है ना व्याद को विचार है ना रंग राग रूप है ना रूप रेख रार है ना हाव है ना भाव है ना दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति

रूप राग ना रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सुधर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाकु आदि पुरख अपार हस्त कीट बिखै बसे सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर बिखै रमियो जे चक्र जेह न चित्र आदि देव उदार मूरत अगाध नाद अनंत आद अंत न जानिए अभिखा देव दुरंत देव भेव न जानी जे करम जेह मरम वेद कतेब सनक संकेश नंदन पावही न सेव जज किंदर मच्छ मानस मृग उरग अपार नेत नेत पुकारी थी सक्र अमुख चार सरफ सपत पतार के तर जाप ही यह जाप आदेव अगात तेज अनाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न वही कर तंत्र मंत्र न कीन सरव ठार रहे विराज तिराज राज प्रवीण जच गंधर्व देव दानु न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखै बिराजे सूत्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न पिहिल भीघर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध्य ऊर्ध न भूम आकाश अनूप जा जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीरथ जात्रण देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिया यह ज्योत शेष नाम संपन्न नेत पूरण होत शोध शोध हटे सब असुर विरोध दानव गरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महाकव गड़द गाढ़ अनंत हार हार कहियो सबु मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखी न सेव कतेब देवदान मूड मानो जच न जाना जेब भूत भगवान भूपत आदनाथ अनाथ अगन बाए जले थले महे सर्व ठौर निवास देह गेहना नेह स्नेह अबेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अद्वेख चक्र जेह न वरण जागो जात पात न भेख रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद याल स्वामी आदेव अपाल दीन बंद प्रवीण श्री बसरार जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न वरण सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू गो भरण दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता सृष्टि करता।

देव अदेव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूम आकाश जले थले मेहमानिया जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता सृष्ट हरता काम तुष्ट हरना सृष्टि करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रुघालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हुके काल दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्व दे प्रतपाल सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज पहाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूत आकार जले थले मय जप जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिया सब चार आदेव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रचार अन्दाता ज्ञान गाता श्रमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता गरम ज्ञाता धर्म चार विचार।

कोट इंद्र उपेंद्र व्यास तनक सनत कुमार गाय गायथ किस बैगुन चक्रत भेमुचार आद आंदा मध्य जागो भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार तखे सब ने पाई जय पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब करकोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच अपछ्र अपार सोद सोद थके महासुर।

कहा नरक निवार। को आत्मा स्वरूप है, का सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है, कहो सकल विस्तार। दोहरा कह जी तब कह मरण है, कवन सुरक कह नरक, को सुगढ़ा को मूढ़ता, कह तरक अवतरक। दोहरा को निंदा जत है कवन, कवन पाप कह धर्म, कवन जो को भोग है, कवन कर्म अब

राम कपरदन दैत जिणां चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन ध्वजा परंकन फणी फुंकारन जोत जिते सरदार बिबरकन दुष्ट प्रकरखन पुष्ट प्रहारखन दुष्ट मथे जय जय हो सी महखासुर मर्दन भूम आकाश तल अर्ध अधे दान दामनी प्रहासन सुछभ निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर चिंती अनल बिवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी महखासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अग ओग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ वारण शोध मते पणि अर्पण कारण बाग बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सैति स्नान अष्ट प्रभान भूल निबान तेज अतुलन जय जय हो सी महखासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हरण धूम दुकारण द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनोज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रदर्शन अष्ट भुजे जय जय हो सी महखासुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे घुंगरु घमंकण सहस्र झमंकण फणी अर फुंकारण धरम दुजे अष्टाद प्रहासन सृष्टि निवासन दृष्टि दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह शुद्ध सनाय अगमथाय एक वृथे जय जय हो सी महखासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुरनर मुन बंद दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावर कुमारी अधम उधारे नरक निवारे आद कथे केंकणी प्रसुवन सुरनर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवारण भय पताल आकाश अनले संकट निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखन तुंद तबे दुग दुग दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे सदा समर्पण तरक वितरकण तपत प्रताप जप जिवे जय जय हो सी।

चंचला जखंगी अनज भुजंगी तुन तरंगण तिछ सरे कर कथा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंकी के हर लंके आद अतंकी क्रूर किथे जय जय उसी रखता सुर खंडन सुंभ चक्र निसुंभ मथे बारज बलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभृत सुभासे दुष्ट ग्रसे।

घंट कब राजा रुण गुण बाजा भ्रम भय भाजा सुना सुरंग गोकल तुल राजा कल्पिक भाजा सुकुप राजा मधुरंग दुर्दंदल दज्जा मंथन रिज्जा सबन पज्जा रोहरणंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोध आरोधन क्रूर वृते यमराज विद्युंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विद्युंसन शुद्ध मते जाल पप जयंती शत्रुमथन ते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आज जुगाद अगाध गते खतियान खतंगी अभय अभंगी आज अनंगी अगाध गते रणराज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पतित उदाहरण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन्ना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकरकण सर्वर वरकण दुष्ट प्रधरकण वितल तले अष्टायद वाहन बोल निवाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रत्यक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने।

चमकन शास्त्र झमकन दामिन दमकन आदि भृति दुग दुग दमन का बाग का भुजा परंग का सुद गति जय जय हो सी मह खासुर मर्दन आजुगाद अनाद मति तछराथ मारण नरक निवारण पति तो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानंचारा नरक निवारण पति तो धारे।

करता करीम कादर कृपाल अद्वै भूत अद्वै दयाल दाता दुरंदुक दुख रहत नीत ने सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बना सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जान जान अंत जाय मन मूड़ क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड़ पदर पूजा करंत कई सिद्ध सात सूरज देवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वै का लखाए अंश जितेद अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै नाथ सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप करुण धान कामल कृपाल दुख दो घर दाता दयाल अंजन विहीन अनबंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जैसा त्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल अपार जाने न जाय रूप रे के बास तास के कौन पे हेघ कै नाम तास है कवन जा जैसा त्र मित्र नहीं पुत्र।

पशुन नाग नाज सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के निक्रम विचार दीन दयाल दया नि दुखत देखत है पर देत नहार दाद है दू दुखन कौदल लुजन का पल मैं डार खंड अखंड प्रचंड पहाड़न पूरन प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद बीत कते अभेद उचार रोज ही राज विलोकत राजिक रोख रुहान की रोजी ना टार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक भवान बनाए देव अदेव खपे अहं में न भेव लख्य भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब ठके कर हाथ नाए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पशिव किंत्री पद्मा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वैक्ष भूत भविक भवान अभ अंत विहीन अनातम आप अदाक अदोग अशित रस है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सुख न भोग न बह देह विहीन स्नेह सभोतन नेह विरक्त अगेह अच्छा है जान को दीत अजान को दे जमीन को दे जमान को दह काहे को डोलत।

अपनो कर जागर पाप समूह ना भेटन पावा। और की बात कहा कह तू सौ सो पेट ही के पट बीज बचावा। जाछ भुजंग सुदान देव अभेव तुम्हें सब ही करते आवा। भूम आकाश पताल रसातल जाछ भुजंग सब सिरनावा। पाय सकने पार प्रवाहू को नेत ही नेत वेद बतावा। खोज थके सभी खुजिया सुरहार परे हर हाथ ना आवा। नारद से चतुरानंद से रूम नारिक से सब हो मिल गायो। वेद कतेव न वेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सकने पारु मप सिद्ध सनात सनातन ते आयो। त्यान तरो देह को मन में यह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सब पचहारे। वेद न पाय सकियो अन भेद को खेदत हैं छेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे।

तौ प्रसाद कबित आत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियो के चलैया मां सत्रण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरोध के मिटैया मां बुद्ध।

पूर्वी न पार पव हिंगुलाहे मलत अव गोर कर तेजी गुण गाव तेरे नाम है। युग युग साध पौन साधना कितेक बाधा आरब के आर भी आराधा तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मान कंधारी कुरेसी जान पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरहटा मघेर तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़वती लंगी पहचान धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है। रोह के रोहिल मांग देश के मघेल वीर बंग से बुंदेल पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश ने आवे तिब्बते दया दोग देह के दलत है। जिन्हें तो इत आयो तिन पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को भेद कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और का उपेन अधीन सद अधीन कहियत है। पाइय न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उजार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछा पहुंचत ताहे चीट की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णावतार किते राम कहियत है। किते सतराशी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडी या उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जक्ष कहियत है। करते है विचार पैना पूरन को पावा पार ताई ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै पार कै बखानिया। अद्वै विनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हो के राशि है नासी कै कमानिया। जंतरु न जा जा की बापू न मायता की पूरन प्रभा की सो छटा कै अनमानिया। तेज युगो तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कै गजानिया। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है।

दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुणन को उपहार है, सिद्ध को स्वरूप है, के बुद्ध को विभूत है, के क्रोध को अभूत है, अच्छा विनाशी है, काम को निंदा है, के खूबी को दिहंदा है, गनी मन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, कालों के काल है, के सत्रण के साल है, के मित्रण को पुकत है, वृद्धता की वासी है, जोगो को यंत्र है, के तेज को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पुराण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है, के बुद्ध हूँ घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है, सिके शुद्धता को सर है, जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, यम जाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, खंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है ना नर है, विश्व को भरण है, के अबदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाइया न पार पार बार हूं को पार जाको, की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विद्या वह पूर्व पार पावे आशा ते अनास है, देवन को देव महादेव को देव है, निरंजन अभेवनाथ।

जहता प्रफुल्ल सुंदर सुजान, फुलतंग प्रफुल्ल लहत मोर, सिर ढुरहे जान मन मथ चौर, गुजरत कमाल राजक रहीम, करुणा निधान कामल करीम, जह तह बिलोक तह तह प्रसोह, आजान बाहु अमितोज मुहा, रोसंग बिरहत करुणा निधान, जह तह प्रफुल्ल सुंदर।

0: बाल जवानी और बिरद फोन तीन अवस्था जान अपा वेखदे आ। आ बच्चा जेड़ा है जदों पैदा हुंदा पा कहिंदे आ बालक है भाई, ओ तो बाद एक समय तो बाद अपा कहिंदे जी ए युवा अवस्था दे विच ए जवानी दे विच आ गया, एक समय तो बाद अपा कहिंदे आ जी ए बुढ़ा हो गया। पातशाह जी कहिंदे कि भाई ए तन दीआं अवस्थावां हन, लेकिन ओ परमात्मा ओ चैतन्य सत्ता जिहड़ी है सच दा आनंद परमात्मा वाहिगुरु जी जो हन, ओ ना बाल अवस्था दे विच आउंदे ना जवानी दे विच आउंदे ना उन्हां नूं कदे बुढ़ापा लगदा।
1: जन्म है नहीं मरण नहीं जो
0: वा, ते ओ आत्मा दा प्यारे ओ कदे जन्म भी नहीं होया, ते जो जन्मिया ना जो जन्मै सो जानो मुआ, जिन्हें जन्म धारण कीता उन्हें मरना, लेकिन जेड़ा प्यारे ओ आ जन्मा, इस करके उस आत्मा दे लई अपां शब्द वरतदे हां आ जन्मा, आ जन्म है करके, ते ओदा जन्म नहीं हुंदा जिहदा जन्म ही नहीं होया, ते जन्म होण तो बाद प्यारियो जवानी आवेगी, बच्चा बाल अवस्था जवानी बुढ़ेपा आवेगा फिर मरेगा, लेकिन जिहदा जन्म ही नहीं हुंदा ते ओ ए अवस्थावां ओदे उत्ते लागू नहीं हुंदियां, ओदी कदे मौत नहीं हुंदी है।
1: देहा दिक हंता निर्वाण,
0: इस करके भाई ए देह आदिक दा ए शरीर दा जेड़ा एदी हंगता मंगता जो है, भाव के जो अपा कहिंदे ना जी ए मेरा शरीर है ए मेरा तन है ए मेरे हाथ पैर आ मेरा मन आ मेरी विचार, ए देह हंता दा इनू नाश करना करो इनू निवृत करना करो।
1: स्वरूप जान्यो निर्धार,
0: जदों देह हंता नाश हो जाती है ओ तो बाद जो रह जांदा अखीर दे विच प्यारी

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब की मत मिल की मत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तलवडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईयां, तुद विण सिद्धि कनै न पाईया, करम मिलै नाही ठाकर हाईया। आख

सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजक आ गए कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ।

को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकण को सेव गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह पद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, छींटी ते कुंचरिय स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घड़ घड़ के पट पट की जाने, जा बुद कर्क करा कर तारा, प्रजा धर तब देहे अपारा, जब आ कर्क करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कश भेद ना जानत, महादेव को कहत सदा सिव, निरंकार का चीनत नह भिव, आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोह तेती, तुमरा लखान जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कई भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उतवज खान बहर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो संकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे अस धुजताओ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे, पुरख जाउन पग परे तहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह हैं, रक्षा हुए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, किरपा दृष्टन जाय निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर

कह चौपाई। सम सतरै सहस भणिजै अर्ध सहस भुन तीन कह जय। भादौ सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र पक्ष

आज आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, पे आप गरीब नवाजा, दास जान कर कृपा करो, मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहेब मैं किंकर थारा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। श्री वाहिगुरु जी अरदास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ समराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दिया वेधाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कलगीधर जी पिता पंथ दे वाली अमृत के दाते। शमशेर बहादुर जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां जी दे आत्मक स्वरूप। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जागती जो जाहरा जूर हाजरा जूर सर्व कला भरपूर सब थाई होए सहाय। चार साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी। साहिब जुझार सिंह जी। साहिब जोरावर सिंह जी। साहिब फतेह सिंह जी। पांच प्यारे चाली मुक्ते सर्व शहीदो मरीदो सच आर्यो प्यारो सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास। तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी की अरदास। श्री वाहिगुरु जी के पास। जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा मत ऊंची मत पत का राखा। आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे। चितावन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख पते। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सखी दान गुरमत दान बुद्ध बबेक रहत रक्षा दान। खालसे जी को श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर सरोवर जी के स्नान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मेले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी बवेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन तारण जी तपियाने जी खडूर जी गुरु की बौली। श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन दार मेले बोलो जी। थाम जी ननकाने जी करतारपुर जी बाबे नानक देहरे जी तख्त केसगढ़ साहिब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी फतेहगढ़ साहिब जी दमदमा साहिब जी धमतान जी मुकतसर जी पौंटे जी तख्त पटना साहिब हरमंदर दिल्ली मैं शीशगंज रकाबगंज बाला साहिब बंगला साहिब सतो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मेले बोलो जी। भगौड़ साहिब जी पंजे साहिब जी कपाल मोचन जी रण मोचन जी नानक मत्ते जी तलगन जी जी नानक जीरा जी शिकारघाट जी हीराघाट जी माता साहिब देवा जी संगत साहिब जी मालटेकड़ी साहिब जी बसमत नगर दमदमा साहिब जी बंदा घाट जी नगीना घाट जी श्री गंगा जी गोदावरी जी के स्नान दर्शन दार मेले बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी को नगारे या निशान साहेबां संजगत तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मेले बोलो जी। सत श्री अकालपुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी। सत श्री अकालपुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी बोलो जी बोलो जी बोलो जी श्री वाहिगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज अंतर जामी सचे पातशाह जी महाराज। आप जी के हजूर अमृतमय शब्द वाणी कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना बाणी सचखंड विच प्रवान करना। आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना। सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होण गुरु नानक नाम चढ़दी कला। तेरे बाणे सरबत का भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पार होए सब नंगे बच्चे शरण जो होया उड़गे स्वा मलेश की कर पूरा पासार लंका बाजे फते का नेक रंग अवतार जाता चक्रवर्ती जाता चक्र भूते सुयाम कौ सुभंग प्रभदास रूपते दुकालम प्रणास दयालम स्वरूपे सदा से अभंग भूते देख देखो फते त्रंबे द्रंग या तज नानु गोविंद सिंह से काल पर

तर्श करो, थोड़ी सेवा नू बहुती करके जाने हो, संगती रूप विच आओ अरदास करके फिर खिमा मंगदे आ। तखत साहब दे सारे सचखंड बोर्ड सिंह साहब, बाबा कुलवंत सिंह साहब जी, जथेदार साहब बाबा राम सिंह साहब जी, समूह मैनेजमेंट, साध संगत जी शीस ते हाथ रख के कलगीधर पातशाह ने, साहब जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने कल और अज सेवा ली है, महापुरुषा ने भी कीर्तन की हाजिरी भरी। सतगुरु कृपा करन, अरदास करदे आ प्रीतम।